श्रोताओं, संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे राम फाटक के स्वर में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए स्वामी स्वरूपानंद की रचना शंकर घाणेकर के स्वर में।

श्रोताओं, अमृता गोखले के स्वर में आप सुन रहे थे वसंत बापट की रचना। कार्यक्रम में अब सुना रहे हैं नामदेव महाराज की भक्ति रचना, जिसे गाया है दीपक पाटेकर ने।

संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे, जिसे गाया था दीपक पाटेकर ने। भक्ति संगीत के कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

अभी आपने श्रीकांत पारगावकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना सुनी। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र का निर्माण था। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है राग बैरागी तोड़ी पर सितार वादन. कलाकार हैं कल्याण मजुमदार. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं प्रीतो दास.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल्स. Listen first to a sitar recital in the rag Bairagi Todi. Our artist is Kollan Mojumdar. Accompanying him on the tabla is Preeto Das.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बैरागी तोड़ी पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे कल्याण मजुमदार, आपके साथ तबले पर थे प्रीतो दास। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग अहिर भैरव पर वायलिन वादन। कलाकार हैं अर्पण बासु, आपके साथ तबले पर हैं तरुण रॉय।
1: लिसन टू अ वायलिन रिसाइटल इन द राग अहिर भैरव। आवर आर्टिस्ट इज अर्पण बासु। Accompanying our artist on the tabla is Tarun Roy.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहिर भैरव पर वायलिन वादन सुन रहे थे। कलाकार थे अर्पण बासु, आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन द राग अहिर भैरव। आवर आर्टिस्ट वाज Orpon Basu. Accompanying our artist on the tabla was Tarun Roy. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बाबूलाल गंधर्व का बेला बहार वादन। प्रस्तुत है राग गुजरी तोड़ी। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है तथा द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं शंतनु किंजवड़ेकर। दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट बेला बहार रिसाइटल बाय बाबूलाल गंधर्व। ही प्रेजेंट्स राग गुजरी तोड़ी, विलंबित गत सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल। ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय शंतनु किंजवड़ेकर।

ये था राग गुजरी तोड़ी। अपना बेला बहार वादन जारी रखते हुए बाबूलाल गंधर्व अब प्रस्तुत करते हैं राग जोग। मध्यलय गत रूपक ताल में निबद्ध है, ध्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। दैट वॉज राग गुजरी तोड़ी। इन कंटिन्यूएशन ऑफ हिज बेला बहार रिसाइटल बाबूलाल गंधर्व नाउ प्रेजेंट राग जोग। मध्यलय गत सेट टू रूपक ताल एंड ध्रुत गत सेट टू तीन ताल।

ये था राग जोग। आप सुन रहे थे बाबूलाल गंधर्व का बेला बहार वादन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे शंतनु किंजवड़ेकर। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग जोग। यू वर लिसनिंग टू बेला बहार रिसाइटल बाय बाबूलाल गंधर्व। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला by Shantanu Kinzavdekar. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद सईद जफर खां का सितार पर बजाया राग श्याम कल्याण में आलाप जोड़ और झाला. विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. We now present a sitar recital by Ustad Saeed Zafar Khan. He first presents Rag Shyam Kalyan, in which you will listen to Alap, Jod and Jhala. The Vilambit and Drut Gat is set to Teen Tal. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak.

0: अभी आप उस्ताद सईद जफर खां का सितार पर बजाया राग श्याम कल्याण सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग जय जय वंती। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने।
1: यू आर लिस्निंग टू राग श्याम कल्याण ऑन द सितार बाय उस्ताद सईद जफर खां। ही नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग जय जय वंती। यू विल हियर द आलाप एंड गत सेट टू अद्धा चौताल। ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक।

0: अभी आप उस्ताद सईद जफर खां का सितार पर बजाया राग जयजयवंती सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद दैट रेंडिशन ऑफ राग जयजयवंती ऑन द सितार बाय उस्ताद सईद जफर खां, वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक विच फीचर्ड अ सितार रिसाइटल बाय उस्ताद सईद जफर खां। दिस प्रोग्राम was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पुष्पराज कोष्टी का सितार और सुरबहार वादन. लीजिए सुनिए सितार पर राग सरस्वती. आलाप जोड़ झाला के पश्चात विलंबित गत तीन ताल में निबद्ध है. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग सितार एंड सुरबहार रिसाइटल बाय पंडित पुष्पराज कोष्टी. लिसन राग सरस्वती ऑन सितार. आलाप जोड़ झाला फॉलो बाय विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल.

यह था सितार पर राग सरस्वती। तबले पर संगत कर रहे थे भूषण परचे। कार्यक्रम को जारी रखते हुए पुष्पराज कोष्टी अब सुरबहार पर प्रस्तुत कर रहे हैं राग खमाज। लीजिए सुनिए आलाप जोड़ झाला, गत चौताल में निबद्ध है। दैट वॉज राग सरस्वती ऑन सितार अकंपनीड ऑन तबला भूषण परचुले। इन कंटिन्यूशन ऑफ प्रोग्राम पंडित पुष्पराज कोष्टी प्रेजेंट्स राग खमाज ऑन सुरबहार। आलाप जोड़ झाला फॉलोड बाय गत सेट टू चौताल।

0: आप सुन रहे थे सुरबहार पर राग खमाज, पखावज पर संगत कहे थे विवेकानंद कुरांगले। इसी के साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पुष्पराज गोष्ठी का सितार और सुरबहार वादन संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की भेंट थी।
1: यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: यू आर लिसनिंग आज ऑन सुरबहार, accompanying him on Pakhavaj, Vivekanand Kurangale. With that, we conclude Sitar and Surbahar recital by Pandit Pushparaj Koshti. This was the contribution of AIR Mumbai.
1: This is Ragam DTH channel, Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन. आज ही कलाकार हैं रमा चौधरी. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय. तो लीजिए प्रस्तुत है राग शुद्ध कल्याण में ख्याल, कलाकार रमा चौधरी.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. This evening we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen to a khayal in the rag Shuddh Kalyan. Our artist is Rama Chaudhary. Accompanying our artist on the tabla is Tarun Roy. Listen now to a khayal in the rag Shuddh Kalyan. Our artist Rama Chaudhary.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग शुद्ध कल्याण में ख्याल सुन रहे थे। आज की कलाकार थी रमा चौधरी। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग रागेश्री में सितार वादन। कलाकार हैं नवारुण चौधरी। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मृण्मोय सरकार। तो लीजिए प्रस्तुत है राग रागेश्री में सितार वादन, कलाकार नवारुण चौधरी।
1: You were listening to a khayal in the rag Shuddh Kalyan. Our artist was Rama Chaudhary. Accompanying our artist on the tabla was Tarun Roy. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present Hindustani instrumental recital. Listen to a sitar recital in the rag Rageshri. Our artist is Navarun Chaudhary. Accompanying our artist on the tabla is Mrinmoy Sarkar. Listen now to the rag Rageshri on the sitar. Our artist Navarun Chaudhary.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी यह राग रागेश्री में सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे नवारुण चौधरी। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मृण्मय सरकार। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन द राग रागेश्री। आवर आर्टिस्ट वाज नवारुण चौधरी। अकंपनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द तबला वाज मृण्मय सरकार। This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं डॉक्टर शरयू कालेकर का गाया राग रामकली में ख्याल. विलंबित रचना एक तालमनी बद है जिसके बोल हैं ऐ सुन लीजिए बीरन पथिकवा. द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं अंग अंग अलसाने लाडली.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे राग रामकली, और आइए अब सुनते हैं डॉक्टर शर्यू कालेकर का गाया राग शिवमत भैरों में ख्याल। विलंबित एक ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं सदा शिव शंकर, द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं

अभी आप सुन रहे थे राग शिवमत भैरव में ख्याल। कलाकार थी डॉक्टर शरयू कालेकर। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत के अंतर्गत आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन. कलाकार हैं पंडित गोपाल शंकर मिश्र. राग है यमनी बिलावल. इसमें आपने आलाप जोड़ के बाद दो गतें प्रस्तुत की हैं जो क्रमशः रूपक एवं तीन ताल में निबद्ध हैं. आपके साथ तबले पर संगत की है उस्ताद इस्माइल दद्दू खान ने. दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गोपाल शंकर मिश्र. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग यमनी बिलावल इन विच ही रेंडर्स टू कंपोजिशन सेट टू विलंबित रूपक ताल एंड ध्रुतगत इन तीन ताल. द एकम्पेनिंग आर्टिस्ट इज उस्ताद इस्माइल दद्दू खान ऑन द तबला.

अभी आप सुन रहे थे राग यमनी बिलावल। कलाकार थे पंडित गोपाल शंकर मिश्र। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गोपाल शंकर मिश्र। यह है रागम DTH पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग जयंत मल्हार। विलंबित तथा द्रुत दोनों गतें 3 ताल में निबद्ध हैं। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग जयंत मल्हार।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में राग जयंत मल्हार। कलाकार थे पंडित गोपाल शंकर मिश्र। तबले के साथ संगत कर रहे थे पंडित यदुनंदन गोस्वामी। हर पल हर समय DTH रागम के लिए ये थी आकाशवाणी भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गोपाल शंकर मिश्र। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है स्वप्नमय बैनर्जी का सरोद पर बजा राग बसंत मुखारी. विलंबित और द्रुतगत तीन तालमनी बद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है सुखमय बैनर्जी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio Delhi. We now present for you a sarod recital by Swapnamay Banerjee. Accompaniment on the tabla is provided by Sukhmay Banerjee. Listen to Rag Basant Mukhari, in which you will hear the alap followed by the vilambit and drutgat set to Teen Taal.

0: अभी आप स्वप्न बैनर्जी का सरोद पर बजाया राग बसंत मुखारी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी सुखमय बैनर्जी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: दैट वॉज राग बसंत मुखारी एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सरोद रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय स्वप्नमय बैनर्जी। अकॉम्पनीमेंट ऑन द तबला वॉज प्रोवाइडेड बाय सुमय बैनर्जी। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समर्थ रामदास की भक्ति रचना से, जिसे गाया है कुमुदिनी पेड़नेकर ने।

कुमुदिनी पेडणेकर के स्वर में अभी आपने समर्थ रामदास की भक्ति रचना सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जयश्री कुलकर्णी के स्वर में संत सोखा मेळा की भक्ति रचना।

संजय श्री कुलकर्णी के स्वर में संत चोखामेळा की भक्तजना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं दीपक पाटेकर के स्वर में समर्थ रामदास की ये भक्ति रचना।

समर्थ रामदास की भक्ति रचना भी आपने सुनी दीपक पाटेकर के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब समूह स्वर में सुनते हैं संत भानुदास की भक्ति रचना, जिसके संगीतकार हैं बाल माई।

संत भानुदास की भक्ति रचना अभी आपने समूह स्वर में सुनी, जिसके संगीतकार थे पाल माली। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संत तुकाराम की भक्ति रचना सौमिक शाह के स्वर में।

सौमिक शाह के स्वर में संत तुकाराम की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कुमुद कुलकर्णी के स्वर में संत तुलसीदास ने रची ये हिंदी भक्ति रचना।

कुमुद कुलकर्णी के स्वर में संत तुलसीदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं चंद्रकांत काळे के स्वर में संत एकनाथ की ये भक्ति रचना।